महामूढ़ कछ भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा शिव, निरंकार का चिंत न भिव। आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तुह तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। एकै रूप अनूप सरूपा, रंक भयो राव कही भूपा। अंडज जेरज सेतज कीनी, पुत भुज खान बौर रच दीनी। कहूँ फूल राजा हवै बैठा, कहूँ सिमट भयो शंकर अकैठा। सिगरी सृष्ट दिखाए अचंभव, आद जुगा स्वरूप स्वयं भव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उभार असिख संगरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेस करो रन घाता। जे अस्तुज तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुख्त हवै मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार ते आए है, ताकि काल निकट नहीं आ है। रक्षा होए ताहि सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो, ताकि ताव तन कमै हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट सा स्वै सका न कोई। एक बार जिन तुमै संभारा, काल फास ते ताहि उभारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, दारिद दुष्ट दोख ते रहा। खड़ग के तुमै सरन तिहारी, आप हाथ दै लिहो उबारी। सर्ब ठौर मोह हो सहाई, दुष्ट दोख ते लिहो बचाई। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूरन सुबराता। किल बिख सकल देह को हरता, दुष्ट दोखियन कौ छा करता। श्री अस्तुज जब भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला। मन बांछत फल पावै सोई, दुख न तिसा।

सब कुछ है, अंदर परमात्मा मौजूद है तो सब कुछ है। सारी दुनिया वधिया लग रही है, पर जो तो जोत मनफी हो गई, जोत निकल गई, तो फिर यह मन लिया जाता है, कह दिता जाता भी हुण शरीर की मौत हो गई। मौत केवल शरीर की होंदी है, जीवात्मा परमात्मा की जोत किसी नवे शरीर में प्रवेश कर जाती है, तो या फिर परमात्मा के नाल मिलाप वो अपने कर्मों के उपर निर्भर है। ये गल आप बाणी बार बार पढ़ते हैं। इतने भी पातशाह कह रहे हैं कि परमात्मा की जोत सारिया के विच है, नैया ते बैरे कन्ना, उस परमात्मा तो बिना, उस नायक तो बिना, उदे तो बिना कोई भी नहीं, उदे तो सखना कोई भी नहीं, सब दे विच मौजूद है। इस गल नूं समझना, जिस दिन आप इस गल नूं समझ गए ना, तो दुनिया के बड़े सारे झगड़े खत्म हो जाए। अज असीं किसी नूं पैसे करके नीवा मनदे पए हां, किसी नूं जात करके नीवा मनदे पए हां, किसी नूं इलाके करके, बोली करके नीवा मनदे। मैं उस इलाके दा, मेरा इलाका ज़्यादा वधिया, ये दूजे इलाके दे विच रहण वाले, जात छोटी है, ये उस धर्म का, वो धर्म नहीं ठीक। तो जिस दिन ये गल समझ आ गई कि परमात्मा सारिआं विच मौजूद है, तो फिर ये परम खत्म हो जाए, ये भुलेखा खत्म। जदों ये गल दी सोझी सानू आ गई, सानू बाणी विच बार बार ये गल समझण लई पातशाह उपदेश बख्शदे। इत्थे भी भगत नामदेव जी भी यह गल समझा रहे कि उस परमात्मा तो बिना, वह परमात्मा जिहड़ा सब तो पहला जिसने अपने आप नूं आप प्रगट किया, वह सब तो पहला है। फिर उसने कुदरत बनाई, तो उस कुदरत विच वह आप भी मौजूद है, वह कुदरत दे विच बैठा है, आप मौजूद। कोई भी प्राणी, भावें किसी भी जीव की गल हो जाए, केवल मनुखां दी नहीं, किसी भी जीव का जिक्र कर। भगत कबीर जी का जीवन मैं एक बार पढ़ रहा सी। भगत कबीर जी बनारस के रहने वाले, पुराने समय के अज भी पिंडां विच बड़े खुले मकान होंदे ने, अपने घर के विहड़े विच बैठे ने, उदों खुले विहड़े दलान होंदे सन, उत्थे ही बैठ के बंदा, हुण तां बड़ा सिस्टम बदल गया है, भी खाना खाने लिए आप डाइनिंग टेबल पर बैठना है, अलग जगह बनी है। वह विहड़े दलान में बैठे ही प्रसादा छकते पे सन कोल ही। हुण अजकल तो आप बड़ा वधिया दूजे नाम रख ले ने, एक सरपोस जिन्हों कहते जो रोटियां होंदिया सन, तो कहते रोटी खाते पे ने, प्रसादा छकते पे ने, तो कोई खुला दलान है, कोई नहीं सी होंदे भी इदा दे काम, बंद मकान नहीं सन होंदे, बाहर एक कुत्ता आया है, वह उतो रोटी चुक के लिया, हूँ भज गया कुत्ता रोटी चुक। भगत कबीर जी वो पिछे भजे, हाथ में डब्बा पकड़िया होया घ्यो वाला, तो उन्होंने कह रहे ने, अरे भाई घी तो लगा ले, सुकी क्यों खाएगा, भाव उन्होंने उस दे विच भी परमात्मा नजर, वो भी परमात्मा। ये अवस्था है, जदों ये अवस्था बने आवे, जदों ये पता लग जावे भी परमात्मा मेरे जिहड़ा सामने बैठा, जिंदे नाल मैं झगड़ा करदा पिया, जिंदे नाल मैं माड़े बोल बोलदा पिया, जदों ये गल समझ आ गई भी इहदे अंदर भी वह परमात्मा बैठा जिहड़ा मेरे अंदर बैठा है, तो फिर जीवन बदल जाए, जीवन जीवन का अंदाज बदल जाए, फिर ये झगड़े वगैरह खत्म हो जाएंगे। अज सारी दुनिया के झगड़े ही झगड़े, घर तो शुरू कर लीए तो वड्डे वड्डे देशों तक चले जाइए, झगड़े ही झगड़े, तो हर जगह समस्या एको ही है, हमें हमें घर, वो कहता नहीं मैं ठीक हूँ, कहता नहीं मैं ठीक, मैं वड्डा मैं वड्डा, मेरे को ज़्यादा ताकत, मेरे को ज़्यादा, एक घर की इकाई तो शुरू करके अगे वधदे जाओ, घर तो महला, महल्ले तो इलाका, इलाके तो शहर, जिला, हर जगह झगड़े, एक दूजे नूं पिछे पाण दीआं कोशिशां हमेशा

0: ते मुख उजले केते छुटी नान, जिनी नाम ते आया गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले केते छुटी नान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: तुदे आगे अरदास हमारी, जियो पिंड साब कहो नानक साब, तेरी वड्याई कोई नाओ न जाने। बोलना जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय, वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए, फिरंगत गुर ते अमरदास, रामदास हुए सहाय, अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई, जिस जिठे शब्द हजाए, तेग बहादुर सिमरिया कर नंद आवै ताए। सब थाई होए सहाय, दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहां दी जोत, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ, दर्शन दीदार का ध्यान धरके बोलो जी। पंजां प्यारियां चौहान साहबजादियां, चालियां मुगतियां, हठियां जपियां तपियां, जिन्हां नाम जपिया वंड के छकिया, देख चलाई ते गवाही देख के अंडिठ कीता, तिन्हां प्यारियां सच्चारियां दी कमाई दा ध्यान धरके बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सिख दिते, बंद बंद कटवाए, कोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े, आर्यां नाल चराए गए, सिखी सिदक

साधु कर का पाते सेवक के कार्य रास सेवा कर तो ये निष्काम दसवत प्राप्त स्वामी अपनी कृपा जसा विक्री नानक सो सेवक गुरु की मात लिए भी सब इस वे गुरु का मान मान सो सेवक परमेश्वर की गात जाने सो साधु कर जिस रहता हर नावान कुबार गुरु का पहले जाओ सर्व निदान जी का दाता आठ पैर पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म जन जन्म पार ब्रह्म एक है आप नहीं कह परम सहस सयान वलया न जाइय नानक ऐसा गुरु बिड़ भागी पाई सफल दर्शन पीख तपनीत पर सत चरण गात निर्मल रीत वेट संग्राम गुरु रवि पार ब्रह्म की दर कह कवि सुन कर भजन करना आग हनीमा संतु खा तुम पतिया ने पूरा गुरा किया जा का मंत्र अमृत दृढ़ पी खा संत गुण भी अंत कीमत नहीं पाए नानु जह पावे तलाई मलाई जिह वाय तनिक सतपुरख पूर्ण बबी काह बोल न पाह चत प्राण यग में गोचर प्राम निर्वा निरा हर निर्वाय सुखदायुता कीमत कना न पाए अनुक पद बंधन नियुत करे चरण कमन हृदय समरह साध बल हरि सतगुर अपने नानक जह प्रसाद ऐसा प्रभु जब नि हो हर पावे जन कोई अमृत पीवा अमर सो हो उस पुरख का ना ही कदे बिना रह जाक मन प्रगटि कुंता साठ पैर हर का नाम लिये सजब दी सेवक आदि मोह माया का संग नाली मन मारा का हर हरि कंध कर दीपक प्रकाश से नानक परम मोह दुख तय दिना से तब तुम्हारे ठाण वरताई अंध पै दुख नाठि पाए जन मन के मिटे आंदी से साधु के पूर्ण अवधि से पाव चूका निरपाव हुए बसे सगर ब्याद मान दिखाया न से जिसका साथ न कृपा तारे साथ संग जब नाम मरार जित पाए चूके प्राम का सुनान कहा रहा जा श्रावण निर्गुण आव सरगुण पियो ही कला तार जन सगली मोहि अपने चारत प्रभा बनाए अपनी कीमत आप पाए हार बिंदु जा ना ही कोई सर्व नरंदरी को सोए पूत पूत रव्या रूप रंग पै प्रकाश साधक संग राज रचना

सूत नरसिंहदीपाव जेस सुख कानत वाछामीत सो सुख साधु संग प्रीत जेस सुबा कव करह परिकरण सा सुबा पज हर की शरण अन के उपावि रोग न जाय रोग मेट हर अवखदलाय सर्व निदान मह हर नाम निदान जब नानक तर्क प्रवान मन प्रबोध हो हर का नायक दह दह ताव ताव बैठाय ता को बिघन न लग को जा कर दा बस हर सुकलता ठंडा हर नायक

गए। मन तन अंतर एक प्रभ रहता गुरु प्रसाद नानक के जाता। श्लोक फिरत फिरत प्रभ आया पर शरण आय नानक प्रभ बेन्दी अपनी भक्ति लाए। अष्टपति जाच जाच प्रभ दान कर कृपा देव हर नाम साध जनक मांगा दूर।

सन जाब पूर्ण कर्ता प्राव सोये तब जम की त्रास कह हो के सोये जाब अब गत या गोचर प्रभी का तब चित्र गुप्त के सब पूछत लिखा जम रहा थन रंजन आ गोचर या गादी दा कौन छोटे कान बंधन बादी

सुतपायजं सर्वकलया प्रवीण तह वेद गतिव कह कुचीन जब अपना पापुर तार तव सघन सघन कह विचार जहापनूच अपना नीरा तह कौन ठाकुर कौन कही अचिर विस्म विस्मर विस्म नानक अपनी गत जन हव जहाँ शाल अशेत अभेद समाय ऊह कसव्यादीस तेहो गुण का नाह प्रवेश जह एक एक एक भगवंता तह कौन अचिंत कहला का चिंता जहाँ अपना पापति अर तह कौन कथ कौन सुन निहर बहु व्यांता।

कूर क्रिया उर जो सब ही जग श्री भगवान को भेद ना पायो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाज बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ द रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा। तव चरणन मन रह हमारा अपना जान करो प्रत पारा। हमरे दुष्ट सब तुम काव हो आप हाथ द मोह बचाव हो। सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिख सब करतारा। मोर अच्छा निज करदा करिया सब बैरन को आज संगरिया। पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिय है चुन चुन सतर हमारे मारिय है। आप हाथ द मुझे उबरिय मरण काल का त्रास निवरिय। हूजो सदा हमारे पच्छा सिरियस तुझ जू करिय हो रक्षा। राख ले हो मुहे राखन हारे साहेब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बपतरा काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो देव दै जच्छन उपजायो। आद अंत एकाय अवतारा सुई गुरु समझिया हो हमारा। नमस्कार तसही को हमारी सकल प्रजाजन आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो सतरन को पलमो बद कियो। घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर असथूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाना घट घट के पट पट की जाना। जब उदकर्ख करा कर तारा प्रजा तरत तब देह अपारा। जब आ कर्ख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब तारा आप अपनी बूझ उचारा। तुम सब ही ते रहत निरालम जानत बेद भेद अर आलम। निरंकार नृभकार नृलंब आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूढ़ उचारत भेदा जाको भेव न पावत बेदा। ता कौ कर पाहन अनुमानत महामूढ़ कश भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा शिव निरंकार का चीनत नह पिव। आप अपनी बुद्ध है जेती बरनत भिन्न भिन्न तुहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा केहे बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप सुरूपा रंक भयो राव कही भूपा। अंडज जेरज सेत जकीनी उत्पुज खान बहुर रच दीनी। कहूँ फूल राजा हुए बैठा कहूँ सिमर भयो शंकर इकैठा। सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप से अंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेच करो रणकाता। जे अस्तुज तव सरनी परे तिनके दुष्ट दुख ख्वाय मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल कौ एक बार ति आह ताके काल निकट नह आह। रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट तरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे ने हरे हो ताके ताव तनक मह हरे हो। रिद सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट छह छह सके न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फांसते ताहे उबारा। जिन नर नाम ते हारो कहा दार्द दुष्ट दोख ते रहा। खड़ग केत मैं सरन तिहारी आप हाथ दैले हो उबारी। सर्ब ठौर मोह हो सहाई दुष्ट दोख ते ले हो बचाई। कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण शुभ राता। किल बिख सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन कौ छा करता। सिरियस तो जे जब भय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला। मन बांछत फल पावै सोई दुख न तसै व्यापत कोई अड़िल। सुनै गुंग जो याहे सुरस ना पावई सुनै मूढ़ चित लाए चतुरता आवई। दुख दर्द पाओ निकट न तिन नर के रह। हो जो या की एक बार चौपई को कह चौपई।
संबत सत्रह सहस पुनिजय अर्ध सहस पुनतीन कहिजय भाद्रव सुधि अष्टमी रविवारा तीर तद्रव ग्रंथ सुधारा सवैया।

0: मनते कबो न बिख्या कर
1: देह अनीत शुद्ध कहा होय काची पीत
0: मन हर के नाम की महिमा ऊच नानक नाम उदरे पतत बहु मूच
1: त्याम जम का भो व्यापै अनक जतन कर तृष्ण त्रापै
0: पेख अनेख गन्नी बुझै कोट पाओ दरगै निसजै
1: मोहे व्यापी माया जाल
0: अवर कर तो सगले जमडाना गोविंद भजन बिन तिल।

0: एहो निर्गुण गुण कछु न बुझै, बख्श लियो तो नानक सीजै।
1: जे प्रसाद धर पर सुख बसै, सुत प्राप मीत बनता संग हसै।
0: जे प्रसाद पीवै शीतल जला, सुखदाई पवन पाप को मुला।
1: जे प्रसाद भोगी सब रसा, सगल समगरी संग साथ बसा।
0: दीने हस्त पाव कर नेत्र रसना, तिसे त्याग अवर संग रचना।
1: ऐसे दोख मूड अंध व्यापे, नानक काढ़ लेहो प्रभ आपे।
0: आद अंत जो राखन हार, तिसो प्रीत न करै गवार।
1: जा की सेवा नव निध पावै, तास्यो मूड़ा मन नहीं लावै।
0: जो ठाकर सा सदा हजूरे, ताको अंधा जानत दूरे।
1: जा की टैल पावै दरगै मान, तिसे बसारा मुद अजान।
0: सदा सदा एहो पूलन हार, नानक राखन हार अपार।
1: रतन त्याग कौडी संग रचै, सास सोर झूठ संग मचै।
0: जो छड़ना सो अस्थिर कर मानै, जो होवन सो दूर पराना।
1: जोड़ जाए तिसका श्रम करा, संग सहाई तिस पर हरा।
0: चंदन लेप उतारै तोए, गर्दर पीत पसम संग होए।
1: अंध कूप में पतत दिकराल, नानक काढ़ लियो प्रभ दयाल।
0: करतूत पशु की मानस जात, लोक बिचारा करै दिन रात।
1: बार भेख अंतर मल माया, सब सुनाहि कछ करा छुपाया।
0: बाहर ज्ञान ध्यान स्नान, अंतर व्यापै लोभ सुहान।
1: अंतर अग्न बाहर तन स्वाहा, गल पाथर कैसे तरा था।
0: जाके अंतर बसै प्रभ आप, नानक ते जन सहज समात।
1: सुन अंधा कैसी मार्ग पावै, कर गै लिहो ओढ़ निभावै।
0: कहां बुझारत बूझै डोरा, निस्कहियै तो समझै पोरा।
1: कहा बिशन पद गावै गुंग, जतन करै तो भी सुर भंग।
0: ऐ पिंगल पर्वत पर पवन, नहीं होत उहा उस गवन।
1: करतार करुनामै दीन बेनती करा, नानक तुमरी कृपा करा।
0: संग सहाई सो आवे न ची।

0: ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लागो गुर प्रसाद नानक मन जागो।
1: जय पर छातु प्रगट संसार तिस प्रभ को मूल न मनो विसार।
0: जय प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूर्त ताको जाप।
1: जय पर छा तेरे कार्य पूरे।